0: ना हो टुटै ना मल लगै ना हो जलै ना जाए धन सुमानस नानका जो गल चलै पाए चौकड़ मुले नाया बे चौके पाया सिखा कान चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थया ओ मुआ ओ चढ़ पिया वे तगा गया महला पहला
1: लख चोरियां।

पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसन हुकम मनाए सी हुकम मन्या होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जो चल खसमै पाए हुरमत सनोगलियो बजो भे दूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गवाई अगला मोह मोह पाणा खाए जिसदा दिता खाव ना दिस कही है सावास नानक हुकम ना चल रही नाल खसम चलै अरदास।

के परावार आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार इकना गली जंजीरिया तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार।

तुद्धिठे सचे पात सहा मल जन्म जन्म दे सजन सचा पात साहु सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोही सबना दावे।

जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला पांजवा, घर पहला अष्टपदिया एक ओंकार। सतगुर पर

कर्ण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी बथ सब जग जिन उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी बथ किन कहिए क्यों देखिए भाई करता एक अकथ गोर गोविंद सलाहिए भाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता

रहाउ। जाके कर सब किश है पाई, नौनिद परे पंडार, तिसकी कीमत ना पवे पाई, ऊंचा आगम अपार। जी जंत प्रतपाल दा पाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा पेटिए पाई, शब्द मिलावन हार। सच्चे चरण सरेवी है पाई, भ्रम पौ होवै नास, मिल संत सभा मन मांझिए पाई, हर के नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे प्रगास, गुर बचनी सुख उपजे पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सब की तूर, घट घट ब्रह्म पसारिया पाई, पेख सुन हजूर, जित दिन विसर पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर, करण करावन समर्थ पाई, सर्ब कला परपूर, प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास, गुरमुख कमल प्रगासी है पाई, हृदय होवे प्रगास, प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया धरत आकाश, गुरपुर संतोखिया पाई, अहनस लागा पाओ, रसना राम रवे सदा पाई, साचा साध सुआओ, करनी सुन सुन जीविया पाई, निहचल पाया थाओ, जिस प्रतीत ना आवई पाई,

0: गए मुसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you.

0: एक ना जपन करतबा दिया अंदर दियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर पला तेरा कर आनंद बधाई तुत कर मार माता ते अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिस जत कता नानक दसन दास तुझे आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सग जगत चंगियाँ।

तरस पयो तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

कच्चो कंचन पयो शब्द गुरु श्रवण सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहन माणक करे ज्ञान गुर कहयो बीचारे कठों श्रीखंड सतगुर किया दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पश परेत सुर नर पए धन जियो ते को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे दे अनित न नित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे धीरज धाम बनाए इह तन बुद्ध संदीपक ज्यों उजियारे ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ ले कातुरता कुतवार बुहार सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अरसो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह शीर्षांदशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साह सज्जन सच्चा पातशाह शीर्षांदशाह जिस पास बैठिया सो

आई अनक जन्म प्रम सरणी उदर देह अंधकूप ते लाव अपनी चरणी रहा ज्ञान त्यान किस कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाव हो बिखम नदी जाए तरणी सुख संपत माया रस मीठे एह नहीं मन मह तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी सुख संपत माया रस मीठे एह नहीं मन मह तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पा

करे एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई, सुकह टल गुर सेवी। एहन सुसहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के। जन्म मरन दुख जा, होवे सिफत खसाम दी। नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पात शाह। मल जन्म जन्म दी कटी, सजन सचा पात शाह। सिर सांद जिस पास बैठे सोही है, सवना दावे साहु। सजन सचा पा

सुख संपत माया रस मीठे, एह नहीं मन मह धरनी। हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत, हर नाम रंग अपरणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाशन है, भगत वछलिया नाथ नाथे, शरण नानक पुरख चुत है। बिलावल महला पंजवा, ताती वावना लगई पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिव लाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कोह नानक किरपा पई, प्रभ पए सहाई। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिए, करते का होए विचारो, तेत कर गाव हो सोहेला, सेव रिहो सिर जनहारो, तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहेला, हो बारी जित सोहेला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै, ते सदा ते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिल कर पाव हो तेल, देहो सज्जन आसीसड़िया, ज्यो होवै साहिब स्यो मेल। घर घर एहो पाहुचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, शे कार शे गुर शे उपदेश, गुर गुर एको बेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कार राख बढ़ाई तोए रहाओ। बिसोए चस्या घड़िया पहरा, थिती वारी माहो हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप माल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिसद चानन सब मह चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बह भरिया, मिल साधु खंडल खंडा ही, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा ही।
ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਹੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ।

हर संतन की तूर अंतर जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूर नानक दास इह सुख मांगे।

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा करम सच्चा निशान सच्चे तो दाख है लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलास।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग है फिरे जल विस्माद पौण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लग है प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रात विस्माद नेड़े विस्माद दूर।

0: करिया सबे गोपियां पर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मोसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला
1: वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फिर सर उडड़ावा झट पाए वेख लोक सैकर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रणजना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत अनंत लाटू मदानियां अनगा पंखी पौंदियां लैना साब सोया चढ़ पवाइया जंत नानक पौंदिया गणत नंत बंदल बंद पवाए सोए पया कृत रचा सब कोय नच नच हसै।

0: तिस जो हरि सुवस्त तिस तिस दीवान भग। नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
1: लख निकियां चंगियां या लख पन्ना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहजोग बेबान। लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करते करुणा किया लिखया मन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा नसान पौड़ी सच्चा सब एक।

0: कहो नानक करते किया बता, जो किछ करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जोग सबदंग ज्ञान सबदंग बे सबदंग ब्राह्मण है, कतरी सबदंग सूर सबदंग सूद्र सबदंग प्राकृत है, सर्व सबदंग एक सबदंग जे को जाने पियो, नानक ता कदास है सोई।

हाथ गोर पर था, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मालनासी, सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्जुन गुण सहज विचारंग।

अहनंस सहज दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफ दुख संबंधी नूर अरसह कुरसह तुदिठे सच्चे पात सह मल जन्म सजन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबनांद सजन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबनां दा वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला नावा मान रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गन कासी उदरी ताको जास उर तारो मान रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गन कासी उदरी ताको जास उर तारो रहा अटल भयो तू जाकै सिमरन हर निरभय पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहाँ लो वर्णो राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतर है पारा अजा मल पापी जग जाने निमख माह निस्तारा
नानक कहत चेत चिंता माना तै भी उतर है पारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो, जेह सिमरत गणका सी उदरी ताको जास।

आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास उल चुक मुवाफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक परोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो।

0: चौकड़ मोला नाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे आ ओह मुआ ओह चढ़ पया बेतगा गया महला पहला।
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लठगियां पैना मियां राधन जी ना तक पहु कती है बामन बटे आए कोई बकरार न खाया सब को वखे पाए कोई प्राणा सुटिया पी फिर पाई होर नानक तक न।

0: आई तो तीट कते जप माले तहन मले शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बा संयम तुरका पहाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे त्रंदा महला पहला
1: मानस खाने करेन बाज छुरी बगायन तिन गलताग तिनक ब्रह्मण पूरे नाद उना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कुड़ा वापार कुड़ बोल करे आहार संतरम का डेरा दूर नानक उड़िया भरपूर मथे टका तिड़ दोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई दिल वस्त्र पैर वे प्रवान मलिश्तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके उपर कसैना जाना देखा चमका कड़ी कार उपर आई बैठे कुड़ियार मत पिटै वे मत पिटै यो अन्न साडा।